0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 167।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1600 ਚੌਕ।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे चुन रहे हैं रेडियो।

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहे तुम्हारा।
4: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी।
1: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: It's a unisex song.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
2: ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ?

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: अल्फा
4: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी।
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
4: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
4: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा
4: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा।
6: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: Alpha, sabse damdar aur romanch kahani.
3: Alpha program uska junoon hai.
2: Shandar action entertainer. 3 July ko.
3: Main jo bana raha hoon wo itihas hai.
2: Alia Bhatt, Sharwari, Anil Kapoor aur Bobby Deol starer.
4: Shuru karo Agni Pariksha.
2: 3 July ko. आपके नजदीकी सिनेमा घरों में अल्फा।
3: इंडिया अल्फा से डरेगा।
5: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
6: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमिग्रेशन .com.au।
8: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
9: हां जी रेडियो।
10: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
11: कह रहे हो?
10: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
11: कह रहे हो?
12: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
13: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
10: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
14: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
15: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
14: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
15: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
14: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
15: आहो जी आहो।
10: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
10: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
16: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
10: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग, वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी हां जी हां जी
1: हां जी हां जी रेडियो हां जी रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: Alfa.
1: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
0: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
0: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
0: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
4: वो आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो।
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
7: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हां जी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हां जी 1674 AM। थैंक यू।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। Oh,

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: सबसे दमदार और रोमांच कहानी
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
2: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
2: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
4: शुरू करो अग्नि परीक्षा
2: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
3: इंडिया अल्फा से डरेगा।
5: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
6: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
7: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
6: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो।
7: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
6: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
7: आहो जी आहो।
8: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: अगला बंदा थोड़ा खुश फील करे थोड़े को ऑर्डर करेगा
1: अपना फील करे
0: क्योंकि इतनी आदत पै गई थानू भी पता किसी ने अगो कहना ही है बोलने वाले ने इस तरह बोलना सके या तो मैं बोलना ही तो हूं मुंह मार दे हाँ जल्दी बोल
1: सही
0: बट जिन्हें इजाद किया होना आइडिया ही होना जो आप डिस्कस कर दे कि बी सो रिस्पेक्टफुल एंड बी सो गिविंग टू एवरी वन की थोड़ा एक करिज्मा लगे है ना फिर उपरो सोने का सुहागा जो तुम वधिया वधिया तरीके ना ड्रेस डॉन अगेन ड्रेसिंग की जो आप गल करते पे हाँ या हाइजीन की गल करते पे ये नहीं करते कि पैसा बहुत उजाड़ो पर सिंपल चीज़ा कि वेल आयरन्ड क्लोथ्स होन अपने है ना प्रॉपर मैच पाया हो गोविंदा साहब दी फिल्मा जिहड़ियां सी जिन्नियां भी या फिर रणवीर सिंह नो आउट ऑफ फिल्मा देख लिए उधर फैशन ना अपनाया हो नॉर्मल जा ना
1: लल्ली नहीं करानी चाहिए
0: लल्ली नहीं हाँ लल्ली आ गया रिटर्न ऑफ लल्ली है ये तबीयत ठीक होगी पा मेरे दिन ये लल्ली तो पता लग जाए तबीयत सेट हो गई है
1: ज्यादा कराती तो फिर नाइस नहीं लगता
0: गाना सुनोगे
1: गाना तुम ना करके केड़ा नहीं सुनना
0: हाए नहीं दसो यार सुना दे
1: गाना जिद्दा मर्जी
0: गाना इदा ना कि गाना ता सुना रहे हैं गाना हैगा लो फेड इच भी औजला साहब यही दस रहे ने कि की
1: अच्छा लो फेड हल्के जी दाढ़ी रखता
0: दाढ़ी रखता ते ए याद रखो जी कि इना दा एक शो हो गया सोल्ड आउट ते दूजा हजे भी बेचण दी कोशिश करदे पए ने poncholivenation.com.au ते करन औजला दा 19 अगस्त दा शो दिन बुधवार दा हजे भी थानू टिकटां मिल सकदियां
1: मौल बजो फिर उत्थे होगी असली
0: ते बाकी समझो ए भी की कहना चाहंदे भाई

0: जदों भी कॉमेडी मूवी की गल हुंदी है ता एक मूवी का नाम हमेशा आंदा है, वह मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोट पोट किया, वह मूवी जिसकी स्टोरी ने ब्रेन रॉट किया।
1: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू ढिल्लों, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट ढिल्लो फिर कहेंगे
2: पर ढिल्लो ने काला कोट एवं नहीं पाया।
0: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
3: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
4: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल।
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस। Yeah.

0: यार तू इतनी नीचे थी, आंखें पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
6: हां जी रेडियो
7: अल्फा, सबसे दमदार और रोमांच कहानी
8: अल्फा प्रोग्राम, उसका जुनून है,
7: शानदार एक्शन एंटरटेनर, 3 जुलाई को
8: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
7: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
9: शुरू करो अग्नि परीक्षा
7: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा,
8: इंडिया अल्फा से डरेगा।
10: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. You are listening.
1: Hanji Hanji, Hanji Hanji, Hanji Hanji, Radio Hanji.
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Hanji.
2: Stay tuned.
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहे तुम्हारे।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: मारे अखियों से हाय हाय कोली।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बोथ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
4: सत श्री अकाल शुभ बोए बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: अवे सिडनी वालों, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मोडी नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होरवी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: अल्फा सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
3: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
4: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
3: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा
3: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
6: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: तैनू ओदे नाल मिलाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।
1: हाँ जी, 1674 है।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: निर्मल होए तुम्हारो चीत।
1: चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे।
0: आप जप हो अवरै नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो।
1: सार भूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ।
0: गुन गावत त्रि उत्तर समैल, बिनस जाए हो मैं बिख फैल।
1: होहे अचिंत बसै सुख नाल, सांस गरा सर नाम संभाल।
0: छाड़ सियान सगली मना, सात संग पावे सजतना।
1: हर पूंजी संच करो बिहार, इहां सुख दर गै जयकार।
0: सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जा कै मस्त कलेख।
1: एको जापे को साला है, एक सिमर एको मन आहे।
0: एक सके गुन गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत।
1: एको एक एक हर आप, पूर्ण पूरहे ओ प्राव्याप।
0: अनक विस्तार एक ते भय, एक अराध पराजित गए।
1: मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता।
0: सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। 8-19 श्लोक।
1: फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
0: जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर कृपा दिवो हर नाम।
1: साधु जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर।
0: सदा सदा प्रभ की गुण गाओ, सास सास प्रभ तुम्हें ते आओ।
1: चरण कमल सो लागै प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत।
0: एक ओट एको आधार, नानक मांगै ना प्रभ सार।
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए।
0: जिन चख्या से जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरख नहीं डोला ने।
1: सो भर भरे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग।
0: परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अंध निर्लाग।
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नामर ते सुख होए।
0: सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई।
1: जन को प्रभ होए ओ दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल।
0: बंधन काट मुकुत जन भया, जन्म मरण दुख परम गया।
1: पिछपुनी शरदा सा पूरी, रब रहया सत्संग हजूरी।
0: जिसका सा तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए।
1: सो क्यों बिसरै जे काल न पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै।
0: सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया।
1: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै।
0: सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै।
1: गुरपूरै ताते है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया।
0: साजन संत करो हो काम, आन त्याग जपो हर नाम।
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो।
0: पाए त्रिय संसार, बिन भक्ति तन हो सी चार।
1: सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूट जात पाए विश्राम।
0: सगल दुख का हो तनास, नानक नाम जपो गुण तास।
1: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआओ।
0: नेत्रो पेक तरस सुख होए, मन बिकसै साधु चरण तो।
1: भक्त जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग।
0: एक बस दीजे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया।
1: ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए।
0: प्रभ क्षण दीन दयाल, भगत विछल सदा कृपाल।
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल।
0: आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार।
1: जो जो जपै सो होए पुनीत, भक्त पाए लावे मन ही।
0: हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान।
1: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए।
0: अनक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन भाई।
1: बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत।
0: पलि सुकरनी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूरन गुरुमंत।
1: साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास।
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। 8-20 श्लोक।
1: सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
0: जब अकार कुछ न दृष्टि, ताप पुण तब कहते होता।
1: जब तारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध के संग कमात।
0: जब इसका वरन चिहिना जापत, तब हर सो को किसे व्यापत।
1: जब आपन आप पार ब्रह्म, तब हो कहां किस होवत परम।
0: आपन खेलिया वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा।
1: जब होवत प्राव केवल तानी, तब बंद मुक्त कहो किसको गनी।
0: जब एक हर गम अपार, तब नरक सुरक को कौन अवतार।
1: जब निर्गुण प्राव सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए।
0: जब आपे आप अपनी जोत धरे, तब कौन निडर कौन कत डरे।
1: आपन चले तब करने हार, नानक ठाकुर अगम पार।
0: अविनाशी सुख अपने आसन, तै जन्म मरण को कहा विनाशन।
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए।
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा।
1: जब नाथ नरंजन अगोचर गादे, तम कौन छुटे कौन बंधन बाधे।
0: आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा।
1: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तूता।
0: जह निरंजन निरंकार निर्बान, तह कौन को मान कौन अभिमान।
1: जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लागत कहो कीस।
0: जह जो स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसे भू कौन तृप्तावै।
1: कर्ण करावन करने हार, नानक करते का नाही सुमार।
0: जा अपनी सुवा आपन संग बनाई, तब कौन माए बा मित्र सुत भाई।
1: जह सर्व कला आपह परवीन, तह वेदक तेव कहां कोचीन।
0: जब आपने आप उड़ता रहे, तो सगन अपसगन कहां बीचार है।
1: जह आपन ऊंच आपन

0: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
1: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
2: Om Shanti.
1: Being bliss mein aapka swagat hai.
2: Thank you so much.
1: Aapke homework bahut dangerous hai.
2: What happened?
1: What happened? Kya hai? Ki wo zara chup rehna mushkil ho raha hai.
2: कोई भी परिवर्तन थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं करना है. भले मुश्किल लग रहा हो, रिजल्ट क्या मिलती है?
1: रिजल्ट मैं सच बताऊं, जब मैंने जोर से बोला ना तीन बार करो, तब हुआ काम.
2: हाँ,
1: तब तक तो तीन बार मैं ट्राई किया था.
2: वेरी नाइस.
1: हाँ, नहीं हुआ.
2: नहीं हुआ. नाउ दिस ऑल्सो व्हाट विल हैपन. मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया. फिर मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया. फिर मैंने जोर से बोला
1: तो हो गया.
2: तो हो गया. अब ये जब मैंने देखा कि मैंने जोर से बोला हो गया, तो मेरा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया कि जोर से बोलने से काम हो जाता है. नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि सामने वाला भी, स्पेशली जो वो लोग हैं जो हमारे साथ ज्यादातर रहते हैं या काम करते हैं, वो भी हमें जानने लग गए हैं.
1: फिर मैंने पूछा भी, क्या मेरे सिर्फ जोर से बोलने पे ही चलेगा? तभी आपकी समझ में आएगा कि जरूरी है मुझे चिल्लाना.
2: नाउ व्हाई? क्योंकि हमें भी एक दूसरे का स्वभाव, संस्कार बहुत ज्यादा अब पता चलने लग गया है. वी ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कि जब ये जोर से बोलते हैं, दैट इज व्हेन इट इज सीरियस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेक दैट बिलीफ सिस्टम. बी असर्टिव बट नॉट लाउड एंड एंग्री. सी रिपीटेड पैटर्न. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम चेंज हो रहे हैं तो सामने वाला भी उसी तरह से चेंज हो जाना चाहिए.
1: हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा
2: नहीं. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ना. टुडे मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू डिसाइड कि टुडे आई विल नॉट गेट एंग्री. एवरीबडी एल्स डजंट नो. या तो अनाउंसमेंट करनी है फिर सुबह.
1: अरे लोग पूछ रहे हैं कि आप नाराज हैं, आप सीरियस क्यों हैं, आज आप ऐसे क्यों हैं, आप बदले हुए क्यों हैं, तो क्या मैं चिल्लाता रहूं?
2: पर रोज वो हो रहा था ना. रोज वो हो रहा था तो आपके साथ जो नेचुरल की डेफिनेशन लगी हुई थी, अभी सडनली एक वन मॉर्निंग जब हम अलग तरह से व्यवहार करें तो वो नेचुरल की डेफिनेशन चेंज हो रही है. तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि जिस दिन हम चेंज हो सामने वाला इमिडिएटली चेंज हो जाएगा.
1: इतना वाइब्रेंट था बंदा, क्या जान थी उसमें. पता नहीं तुम कमजोर सा हो गया, पता नहीं चुप सा हो गया, उदास सा हो गया, ऐसी बातें सुनने में मिलती
2: है. एंगर को हमने स्ट्रेंथ समझा हुआ था. जोर से बोलना, चिल्लाना, शोर मचाना, इसको स्ट्रेंथ समझा हुआ था. इसको पावर समझी हुई थी. यू नो मेनी टाइम्स पीपल से इफ यू डोंट नॉट गोइंग टू गेट एंग्री दैट मींस यू आर वीक एंड इवन गेट स्केयर्ड कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में आसपास, कि मैं कुछ बोलता भी नहीं ऊपर से. समबडी सेज समथिंग, मैं चुप रहता हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. देन थर्ड फियर, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. फिर तो कोई भी कुछ भी करेगा एंड आई विल नॉट से एनीथिंग. दिस इज व्हाट दे विल फील.
1: नहीं है क्या, लोग जब देखते हैं कि इतना सब हो गया और ये आदमी चुप रहा, ये डरपोक है. और
2: स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड.
1: हाँ,
2: कि कुछ
1: इसको तो कुछ भी बोल दो चलेगा, इसको बार बार बोलते रहो.
2: ओके. इन दोनों बातों की थोड़ी सी गहराई से चेकिंग करनी चाहिए कि एक, अगर हम चुप रहेंगे, अगर हम शांत रहेंगे, अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम कमजोर हैं. जो शोर मचा देगा, चिल्ला देगा, किसी के सामने वाले की बात नहीं सुनेगा, उसकी बात पर उल्टी अपनी बात जोर से बोल देगा, अपने आप को डिफेंड करेगा, वो स्ट्रांग है. दिस इज द बिलीफ सिस्टम. राइट? नाउ वी डोंट नो व्हाट एवरीबडी सेज. वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि जब कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में रिएक्ट कर देना वो इजियर है या चुप रहना वो इजियर है? रिएक्ट करना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक कर लेगा. बात आई, रिएक्ट कर दिया, उसने शोर मचाया, उससे ज्यादा जोर से शोर मचा दिया, उसने चिल्लाया तो मैंने तो हाथ ही उठा दिया, ये तो इजी है. लेकिन सामने वाले ने कुछ किया, क्रिटिसाइज किया, झूठ बोला, गलत किया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, और हम चुप रहे, दिस विल रिक्वायर स्ट्रेंथ. सो विच इज मोर पावरफुल?
1: पावरफुल चाहिए हमको या दुनिया में जीना है?
2: हाँ, अब दुनिया में जीना है. दुनिया में जीने के लिए हमने पिछली बार भी, इनफैक्ट हम इतने दिनों से यही देख रहे हैं कि जीने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए.
1: मैं तो समझता हूँ जीने के लिए दो थप्पड़ मारो किसी को, अगली बार वो नजदीक नहीं आएगा.
2: नो प्रॉब्लम. एक बात आई, किसी स्टाफ ने काम नहीं किया, हमने गुस्सा कर दिया, काम हो गया, काम हो गया.
1: आसपास वाले भी डर के रहते,
2: सब लोग डर के रहते हैं, काम हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं. फिर टेलीफोन वाले का फोन आया, उसने कल गलत किया था, काम नहीं कर रहा था जो उसको बोला, उस पर चिल्लाया, वो काम हो गया. फिर किसी प्लम्बर को फोन किया, कार्पेंटर को फोन किया, उसने ठीक से काम नहीं किया था, उस पर चिल्लाया, मेरा काम हो गया. ऑफिस में किसी ने ठीक से काम नहीं किया, उस पर शोर मचा दिया, काम हो गया. फिर बच्चे भी गलत किया, उन पर भी चिल्ला दिया, तो भी मेरा काम हो गया. बच्चे डिसिप्लिन्ड हो गए, सब लोग मेरा कहना मानने लग गए. सिनारियो परफेक्टली वर्क्स लाइक दिस.
1: करेक्ट.
2: ये बिलीव सिस्टम से हम रिएक्ट करते गए, काम होते गए, बच्चे कहना मानते गए, लोग मुझसे डरते गए, काम होते गए होते गए, वी अचीव्ड एंड अचीव्ड एंड अचीव्ड. लेकिन हर बार जब मैंने ये वाला तरीका यूज किया, हर बार जब मैंने ये वाला तरीका यूज किया, मैंने अपनी शक्ति को गवाया.
1: शक्ति कैसे कम हुई? शक्ति तो बढ़नी चाहिए. इसको बोला काम हो गया, उसको बोला काम हो गया, उसका और मैं पावरफुल हो गया.
2: कौन सी एनर्जी यूज करके बोला? अगर सिर्फ बोला और काम हो गया इज फाइन.
1: नहीं, गुस्से वाली एनर्जी.
2: तो गुस्सा, हर बार जब गुस्सा किया, हर बार जब शोर मचा दिया, हर बार एक फोन उठाया, खट खट खट खट चिल्ला दिया दूसरे पे, काम हो गया. एनर्जी कौन सी क्रिएट की? मैंने कौन सी एनर्जी क्रिएट की? आई द बीइंग कितनी टर्बुलेंट टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट की. एंड उसका प्रूफ है कि वो टर्बुलेंट एनर्जी सिर्फ यहां नहीं डिस्टर्ब करती. उस क्षण अपना पल्स देख ले, उस क्षण अपना हार्ट बीट चेक कर ले.
1: मुझे तो पसीना भी आया था ज्यादा गुस्से में.
2: उस क्षण अपना ब्लड प्रेशर उसी क्षण चेक करवा ले. ये तीन पैरामीटर्स तो आप चेक करवा लो उस टाइम पे.
1: कभी कभी ज्यादा गुस्से में तो हाथ कांपते हैं.
2: यस, मुंह जबान लड़खड़ाती है, शब्द बदल जाते हैं सारे. अब बात हो गई, काम हो गया, टर्बुलेंट इतना. सी इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी. वी हैव सीन के हर थॉट का बॉडी पर इफेक्ट होता है, लेकिन ये इफेक्ट तो उसी टाइम दिखाई देता है. मतलब वो टर्बुलेंट थॉट पावरफुली टर्बुलेंट कितनी है कि उसका इफेक्ट उसी समय बॉडी पर मैनिफेस्ट हो गया सारा. अब 10 मिनट बाद बात खत्म हो गई, उतनी देर में कोई और बात आ गई, मैंने फिर वो वाला मेथड यूज किया, क्योंकि नाउ इट्स बिकम माय बिलीफ सिस्टम. एंड यू नो, नाउ दिस हैज बिकम अ सेंस ऑफ पावर फॉर मी, आउटर पावर, कि मैं बोलता हूँ काम हो जाता है.
1: सिस्टर इजी भी तो हो गया ना काम.
2: काम हो गया ना,
1: छुट्टी में काम हो गया.
2: अब जितनी अंदर पावर कम होती जाएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी अंदर पावर कम होती जाएगी, फॉर मी टू फील पावरफुल आई विल नीड टू ऑलवेज बी श्योर दैट अदर पीपल आर इन माई कंट्रोल.
1: फॉर मी टू,
2: फिर से ध्यान से देखते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डीप और इसकी हर एक की चेकिंग होने वाली.
1: मुझे दोबारा सुनना है.
2: जितना हम आज, क्यों हम चाहते हैं कि लोग हमारे कंट्रोल में रहे, लोग मेरा कहना माने, जैसा मैं चाहूं वैसा होना चाहिए. बिकॉज जब ऐसा होता है, आई एम पावरफुल. चाहे वो एक फादर है, एक हस्बैंड है, एक मालिक है, एक दोस्त है, कुछ भी, दैट साइन ऑफ पावर, दैट साइन ऑफ कंट्रोल. आई एम कंट्रोलिंग, आई एम द पावरफुल वन.
1: सब मेरे भी करते हैं.
2: हाँ हाँ. सो इट्स नॉट अबाउट मैन, इट्स अबाउट द सोल, इट्स एवरीबडी. ये क्यों? और ये बढ़ता जाएगा. ये बढ़ता जाएगा क्योंकि जितना अंदर मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने मन पर, अपने शब्दों पर, अपने हाथ पर भी धीरे धीरे कंट्रोल नहीं है. जितना अपने पर कंट्रोल नहीं, सो आई स्टार्ट बिकमिंग पावरलेस ना. एनीथिंग व्हिच इज आउट ऑफ कंट्रोल.
1: एक मिनट, मुझे एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा. आपने कह दिया कि मैं जब लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो उसका मतलब तो आपने कह दिया कि मुझे अपने पर कंट्रोल नहीं है.
2: नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि जब आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो तब आपका अपने पे कंट्रोल नहीं है. लेकिन चेकिंग कि लोगों को काम कराने का और कंट्रोल करने का तरीका कैसा वाला है.
1: अगर मेरा गुस्सा निकलता रहता है तो दैट मींस मैं वीक हूँ, मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है।
2: हर बार बीमार हो रहे हैं हर 10 मिनट बाद। अगर मेरा शरीर हर 10-15 मिनट बाद बीमार हो, आई विल से वीक बॉडी। नो, थोड़ा सा मौसम बदले बीमार, थोड़ा सा पानी कुछ पी लिया बीमार, थोड़ा सा एक हवा में कुछ बदला बीमार, तो आई विल से वीक बॉडी। इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है। आसपास देखो, उन लोगों के लिए भी तो वही मौसम बदला था ना, वो कैसे ठीक है सभी? डॉक्टर विल से वीक बॉडी, अपने को स्ट्रांग बनाओ। सिमिलरली बात आई बीमार, फिर कुछ हुआ फिर बीमार, फिर थोड़ा सा तो बात नहीं भी आई तो भी बीमार, कहेंगे इनको तो बिना बात के गुस्सा आता है, क्योंकि अब मेरी बीमारी इतनी बढ़ती गई। आई 10 मिनट रही, फिर 10 मिनट ठीक हुई, फिर 10 मिनट रही, धीरे धीरे वो 10 मिनट बीमारी 15 मिनट एक्सटेंड होती रही। देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंगर स्टार्टेड बिकमिंग माई वे ऑफ लिविंग, माई नेचर। फिर लोग
1: बीइंग एंगर, अब समझ में आया मुझे।
2: बीइंग एंगर, देन आसपास के लोग कहेंगे इनको तो बिना बात के भी गुस्सा आता है, मतलब बात कुछ चाहिए ही नहीं इनको अब गुस्सा करने के लिए, ऐसे ही गुस्सा कर देते हैं। क्योंकि आई हैव गॉट इन टू द पैटर्न। पहले क्या हुआ था, बड़ी बात आई, गुस्से का तरीका यूज किया, फिर धीरे धीरे देखा रिजल्ट मिला, काम हो गया। आई सेड दिस इज नाइस, मेरा काम हो जाता है, सब लोग मेरी बात सुनने लगते हैं। आई स्टार्टेड यूजिंग इट मोर ऑफन, धीरे धीरे फिर छोटे छोटे काम के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया, फिर मेरा बन गया वो संस्कार।
1: फिर नॉर्मल बात करते करते भी हो जाता है,
2: देन बिना कोई काम के भी इरिटेट हो जाएंगे। अब जितनी बार हुए, टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट की, मन पर भी असर हुआ, शरीर पर भी असर हुआ, रिश्तों पे तो खैर प्रभाव पड़ा ही पड़ा, लेकिन मेरी अपनी पावर, एवरी टाइम आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम हेल्थ टू डिजीज। एवरी टाइम, अगर मैं साल में 5 बार बीमार पड़ती थी पहले, अब मैं 20 बार साल में बीमार पड़ू, तो इस साइन द बॉडी बिकमिंग वीक। इसी तरह अगर मेरे को दिन में 1 बार गुस्सा आता था, आज अगर मेरे को दिन में 5 बार गुस्सा आ गया, माइंड बिकमिंग वीक, एंड विच मीन्स पावर कम होती जा रही है। जितनी, अब ये बहुत डीप साइकिल कैसे बन जाएगा, ये डीप एडिक्शन कैसे बन जाएगी, जितनी पावर अंदर कम होती जाएगी, उतना द नीड टू हैव पावर ओवर अदर पीपल विल इंक्रीज।
1: फिर से कहिए।
2: जितनी पावर अंदर कम होती जाएगी, उतना द नीड टू हैव पावर ओवर अदर पीपल विल इंक्रीज टू फील पावरफुल।
1: माय गॉड,
2: सपोज आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ, ओके, इफ आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, आई नो आई एम पावरफुल। पावरफुल इन द सेंस कि मुझे अपने पे गारंटी कि अगर परिस्थिति अच्छी नहीं भी होगी, आई विल बी फाइन। दिस इज पावर। पावर नॉट ओवर सिचुएशन, पावर नॉट ओवर पीपल, पावर ओवर माई सेल्फ। ये गारंटी, ये अगर अपने पे गारंटी है कि इट मीन्स मेरे पे अपने पे गारंटी, मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, अगर मौसम ठीक नहीं भी हुआ तो आई एम फाइन। जब इतना पावरफुल होंगे तो लोगों के ऊपर कंट्रोल करना ये पावर नहीं होगी मेरे लिए, बिकॉज आई नो आई एम पावरफुल। लेकिन जब अंदर पावर कम होती जाएगी, लोगों के ऊपर पावर, ये एडिक्शन बढ़ती जाएगी। अब जितनी ये बढ़ती जाएगी और उनको कंट्रोल करने के लिए फिर हम और ज्यादा रिएक्ट करेंगे, उतना अंदर की पावर
1: और कम होती जाएगी।
2: ना दिस इज अ डाउनस्लाइड, एंड दिस इज अ वेरी फास्ट डाउनस्लाइड। वी आर नॉट इवन गोइंग टू रियलाइज इट्स गोइंग टू गो सो फास्ट। ऐसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, एंड जितनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उतना लोगों को कंट्रोल करना, ये एडिक्शन बढ़ती जाएगी। जितना
1: लोग एडिक्शन यूज कर रहे हैं,
2: इट्स एन एडिक्शन, नो, इट्स अ वेरी डीप एडिक्शन दैट पीपल शुड बी इन माय कंट्रोल। आई नीड टू चेक दिस वेदर आई हैव दिस एडिक्शन। लोग मेरा कहना माने, लोग मेरे अनुसार चलें, जो मैं कहूं जैसा मैं कहूं वैसा होना चाहिए, दिस इज अ वेरी डीप एडिक्शन। हम तो अपनी सिर्फ ऊपर की एडिक्शन देते हैं,
1: तो दिमाग हिल गए सुन के ये वर्ड,
2: वेरी डीप एडिक्शन
1: है।
2: ये एडिक्शन है क्योंकि फिर आपको हर बार चाहिए ना, हर एक के साथ चाहिए ना, फिर आप यू आर नॉट एबल टू लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी.
1: उसके बिना जी नहीं सकता है बंदा, फिर
2: अनइजी हो जाएगा ना. आप किसी के भी साथ होंगे, यू विल वॉन्ट देम टू बी द वे यू वॉन्ट देम टू बी. किसी के भी साथ, अब वो हर एक के साथ हो जाएगा, क्योंकि अब वो मेरी एडिक्शन,
1: मेरे जैसे कि और एक और सामने मिल गया वो वाले एडिक्शन वाला,
2: बहुत बड़ी टक्कर. दिस वी हैव टू चेक, ये बहुत बड़ी एडिक्शन है. सिचुएशन और लोग, एंड मोस्ट ऑफ अस हैव दिस एडिक्शन टुडे. रिएक्शन अलग अलग तरह करेंगे, लेकिन ये एडिक्शन हम में से आज मेजोरिटी को है कि परिस्थिति और लोग मेरे अनुसार होने चाहिए. क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति और लोग मेरे अनुसार होते हैं तब मैं खुश. चाहिए क्या मुझे जीवन में? खुशी. खुश रहने के लिए क्या मुझे चाहिए होगा? लोग और परिस्थिति मेरे अनुसार हो. तो मेरा पूरा जीवन का फोकस क्या हो गया? टू मेक सिचुएशंस एंड पीपल बी अकॉर्डिंग टू मी.
1: And control them all
2: control
1: the time.
2: सारा दिन control है. And right from controlling a little child to controlling everyone around me. अब spirituality इस focus को shift करती है. First with the understanding कि आप लोगों को control कर ही नहीं सकते. हाँ, क्योंकि हम शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, या क्योंकि हम position में हैं. You know, suppose आप boss हैं, आपका staff है, आप position में हैं. आप फादर हैं, आपके बच्चे हैं, आप पोजीशन में हैं, राइट? आप बड़े हैं एज में, दूसरे छोटे हैं, आप पोजीशन में हैं.
1: लिहाज है
2: नहीं, पोजीशन है. ये आपके एक पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एज, पोजीशन ऑफ रिलेशनशिप, पोजीशन प्रोफेशनली. इस पोजीशन की वजह से हमारे आसपास के लोग डर से, मजबूरी से,
1: आउट ऑफ रिस्पेक्ट,
2: नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट,
1: नहीं,
2: आउट ऑफ फियर.
1: ओल्ड बिलीफ सिस्टम भी है ना, बड़ों ने कुछ बोल दिया चलो चुप रहो,
2: लेकिन दैट्स नॉट रिस्पेक्ट. अगर बड़ों ने कुछ बोल दिया और मैं चुप रही लेकिन अंदर से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं रिस्पेक्ट नहीं किया उस टाइम. फिर
1: तो मुझे अगर कोई छोटा बोले तो मैं तो बोलूंगा कि ही इज डिसरिस्पेक्टिंग मी.
2: यस, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा. सी, आपने कुछ कहा,
1: अगर उस छोटे ने मुझसे बोला कि डैडी आपने ये जो बात बोली अच्छी नहीं लगी, तो मुझे वो अपनी तरफ से सही है,
2: सही कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है,
1: और मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं समझू.
2: नहीं, लेकिन आपको वो डिसरेस्पेक्ट इसलिए लगेगी, सपोज आपने कुछ कहा,
1: अगर बोलेगी नहीं, बीवी नहीं बोलती है, देख लेते हैं आप ज्वाइंट फैमिलीज में, डैडी से ऐसी बात नहीं करते बेटा, बड़े हैं ना, उन्होंने बोल दिया ना, अब चुपचाप शांति में रहो, बड़े कुछ बोलते हैं तो चुप रहो. तब अगर मुझे डायरेक्ट मेरा बेटा मुझे बोले कि आपने क्या कह दिया मुझे, ये कर दिया मुझे, ऐसे थोड़े आप बात करते हो, मैं भी तो बड़ा हो जाऊं, तो फिर मुझे डिसरेस्पेक्ट लगता है कि भाई छोटा बड़ों को बोल रहे.
2: परफेक्ट. क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या थी? रिस्पेक्ट की डेफिनेशन यहाँ हम चेक करेंगे. आप फादर हैं, वो बच्चा है, या आप बॉस हैं, वो स्टाफ है, आपने बोला, उसने माना, ये रिस्पेक्ट.
1: या बर्दाश्त कर गया या चुप रह गया.
2: तो आपने बोला, उसने माना, माना और किया, राइट? आपने बोला, उसने किया, दिस वॉज रिस्पेक्ट.
1: मेरी इज्जत रखी, मेरा मान रखा,
2: तो रिस्पेक्ट. अब इसको देख लो, आपने कुछ बोला, मैंने कर दिया. क्यों कर दिया? आउट ऑफ फियर, मजबूरी, या फिर क्योंकि मेरी भी ये डेफिनेशन है कि अगर नहीं, अगर उल्टा कुछ बोल दो या करने से मना कर दो तो दिस इज डिसरिस्पेक्ट. ओके, अब ये हमारी डेफिनेशन है. तो हमने करना शुरू कर दिया जो हमें किसी ने कहा, लेकिन करते करते हम खुश नहीं है वो करते.
1: हाँ, मजबूरी से करता है,
2: मजबूरी से करता है आदमी. अब मजबूरी से कर रही हूँ मतलब मैं कर रही हूँ, अंदर खुश नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है, ये सही भी नहीं है, मुझे मालूम है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकल के आने वाला, लेकिन अब इन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा. ये हर टाइम मेरे ऊपर अपना जो भी है इंस्ट्रक्शन वो इन्फोर्स कर देते हैं, एंड आई हैव टू डू इट. ये सारी थॉट्स एनर्जी कौन सी है? हैवी, हैवी. मैं कंटिन्यूसली सोचूंगी, मैं काम करूंगी, आपका कहना भी मानूंगी, लेकिन अंदर टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट हो रही है. आपको लग रहा है यू आर वेरी हैप्पी कि आपने कहा, मैंने माना, गिव्स यू अ सेंस ऑफ पावर, कंट्रोल. लेकिन सपोज जितनी देर, एंड वो देर हो सकती है या तो 10 मिनट, 10 दिन, 10 साल या जीवन भर, लेकिन उतनी देर मैंने आपके लिए थॉट्स कैसे क्रिएट की, इनकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। इन्होंने बोला मैंने किया, हर बार अपनी बात मनवाते हैं। हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं ऊपर से, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्या करें? आई डोंट हैव चॉइस, मजबूरी है, करना पड़ता है। दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स प्योर पावरफुल एनर्जी, क्लीन ब्यूटिफुल थॉट्स फॉर द अदर पर्सन। ये एक एक थॉट बहुत अच्छी नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, मैं उदास हूं और आप मेरी उदासी का कारण है। दिस इज हाइएस्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी। व्हेन आई होल्ड समबडी एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मी बीइंग इन पेन, पेन मीन्स आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट एवर आई हैव डन, दैट पर्सन इज गेटिंग नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम मी। दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। लेकिन हमने रिस्पेक्ट को उस लेवल पर तो देखा ही नहीं ना। हमारे लिए रिस्पेक्ट क्या थी? मैंने बोला, हो गया, मैं रूम में आया, उठ गए, जैसे मैंने कहा करते गए। मीन्स दे रिस्पेक्ट मी, दे फियर मी। फियर एंड रिस्पेक्ट एक टाइम पे नहीं रह सकता है, फियर एंड लव एक टाइम पे नहीं रह सकते हैं। ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं। जो हमसे डरते हैं वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे आते ही या हमारी थॉट से ही उनकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। एनर्जी ऑफ फियर इज वन ऑफ द हाईएस्ट नेगेटिव एनर्जीज, एनर्जी ऑफ फियर। मुझे डर लगता है इनसे, दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। आपको अगर औरों से रिस्पेक्ट चाहिए तो मतलब दूसरे मेरे बारे में कैसा सोचे। तो ये जो हमने डेफिनेशंस बनाई हुई है, अब जितना, अब ये आपके लिए क्या रिस्की है? एक, आपको कंटिन्यूअस मुझसे ये एनर्जी मिलेगी। अगर वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन था तो कंटिन्यूअस आपको वो एनर्जी मिलेगी। जब हमें औरों से नेगेटिव एनर्जी मिल रही होती है, वो हमारी बैटरी को डिप्लीट कर रही है। कहना तो मान लिया, मुझे लगा आई एम पावरफुल, लेकिन अंदर से माई पावर इज गेटिंग डिप्लीटेड। वन, because my sense of power has become dependent on other people, and second, that other person is continuously sending me negative thoughts. ye dikhai nahi dega, ye kisi ko dikhai nahi dega ki kaise ho raha hai, lekin dusron ki vibration meri energy ko suck karte jayegi. jab log mujhse darte hain, wo dar un par effect kam, mujh par effect zyada karega, क्योंकि सबका डर मेरी ताकत को।
1: लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे,
2: हाँ,
1: तो वो जो उनके अंदर दबा हुआ है सप्रेशन, वो खट खट खट खट खट खट खट कर वापस बैकलैश आता है।
2: वो भी आएगा, वो भी आएगा। वो इसलिए बैकलैश आएगा क्योंकि थॉट लेवल पे वो शुरू से था,
1: वो अंदर भरा पड़ा है। और जैसे ये बड़ा होने लग गया बच्चा, और थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लग गया, शादी होगी और बड़ा हो गया, तब वो उसका एटीट्यूड बदलेगा, और तब उसको ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी, वो जबरदस्ती के अपने बाप को या जो भी उसके ऊपर दबाव डालता था वो डालने लगेगा।
2: बिकॉज फियर ऑफ पोजिशन से वो बाहर निकलने लगा है। पहले पोजिशन थी ना, एज या पोजिशन, रिलेशनशिप, उस पोजिशन से वो बाहर निकलने लगा है। किसी न किसी कारण की वजह से वो आपका बात मानता गया, कोई भी, एनीबडी। अच्छा, इसमें भी रिस्क क्या आएगा? रिस्क देखो कितना है। जब तक लोग हमारा कहना मानते रहे, हमारे अनुसार चलते रहे, वी थॉट एवरीथिंग वॉज इन माई कंट्रोल। अब क्योंकि आपने कहा मैंने माना, फिर आपने कहा मैंने माना, दिस स्टार्टेड मेकिंग यू फील पावरफुल। जहां पावर बाहर किसी और पर हमें लगेगी, वहां एक थॉट हमेशा रहेगी ऑफ इनसिक्योरिटी, विल दे ऑलवेज रिमेन इन माई कंट्रोल। दिस इज वेरी सटल, क्योंकि जहां अडिक्शन होगी किसी पावर की, कंट्रोल की, वहां ये इनसिक्योरिटी हमेशा रहने वाली है कि क्या ये हमेशा मेरे ऐसे कंट्रोल में चलेंगे? अगर कल इन्होंने मेरी बात मानी नहीं तो अब हमेशा सामने वाला हमारी बात नहीं मानेगा। जिस दिन उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी, जिस दिन एज बच्चों की बड़ी हो जाएगी, जिस दिन उनकी डिपेंडेंसी हमारी किसी ना किसी चीज पर वो कम हो जाएगी, या जिस दिन कोई ऐसी बात होगी जो वो मान ही नहीं पाएंगे। कई बार ऐसे भी होगा कि कोई ऐसी बात आप उनको कहेंगे जो वो जस्ट नहीं मान सकते।
1: मैं किसी को जानता हूँ जो बहुत प्रॉब्लम में थी वो औरत, मतलब पति उसको दबाता ही रहता था। शादी के 20 साल बाद शी वॉज वेटिंग फॉर द डॉटर टू गेट मैरिड। जैसे शादी हुई दूसरे दिन वो घर छोड़ के चले गई और डिवोर्स किया। कब से बर्दाश्त कर रही थी?
2: मजबूरी थी।
1: हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा ना,
2: टूटा
1: नहीं, रीजन क्या था? हाँ। कि बेटी की शादी।
2: यस, तो वो बात टूटी ना, आपकी मजबूरी खत्म हुई। जैसे ही वो लाइन क्रॉस हुई, आपकी डिपेंडेंसी, चाहे वो सोशल प्रेशर, कितनी रीजंस हो सकते हैं, जैसे ही वो टूटा तो आपने वो छोड़ दिया। लेकिन वो तो 20 साल बाद हुआ ना, दैट्स ओके। 20 साल बाद हुआ, 20 साल कैसे बीते वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 20 साल बाद मेरा कहना नहीं माना और इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, 20 साल कैसे बीते, दिस वी नीड टू चेक।
1: 20 साल पति का कहना मानती रही, बर्दाश्त करती रही,
2: कहना मानती रही भी ठीक है, लेकिन 20 साल ना, आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, 20 साल कैसे बीते वाइफ के लिए दर्द में, अनहैप्पी। तो हम अगर, जैसे आपने भी किसकी पोजीशन
1: पति के लिए एडिक्शन,
2: नहीं एडिक्शन भी ठीक है, लेकिन डिप्लीशन,
1: अच्छा,
2: दिस वेरी इम्पोर्टेंट। हम वो वाला एस्पेक्ट नहीं देखते, हम देखते हैं वाइफ बिचारी, मजबूर, पिटी, विक्टिम, क्योंकि हमारे हिसाब से जो कंट्रोल कर रहा है वो पावरफुल है, जो कंट्रोल हो रहा है वो विक्टिम है। एक्चुअली बहुत बड़ा विक्टिम वो है जो कंट्रोल कर रहा है। विक्टिम ऑफ हिज पावरलेसनेस, उसकी एनर्जी कितनी डिप्लीट हो रही है सारा दिन। इवन इन दिस पोजिशन वॉट यू से,
1: सबसे तो उस पर कंपैशन करना चाहिए।
2: एब्सोल्युटली कंपैशन, लेकिन अगर हम उस पोजिशन में हैं तो आज हमें चेंज होने की जरूरत है। अगर हमारी डेफिनेशन ऑफ पावर, हमारी डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यू सेड, डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट, इवन डेफिनेशन ऑफ लव, इफ यू लव मी डू दिस फॉर मी।
1: नहीं, बट आप मुझे थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करेंगे वो क्यों विक्टिम है?
2: अच्छा, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है।
1: हाँ?
2: हस्बैंड बोलते गए, वाइफ करती गई।
1: हाँ?
2: जो बोला वो किया, जो बोला वो किया, खुश होकर नहीं किया, मजबूरी से किया।
1: हाँ?
2: तो जो मजबूरी से करता रहा, वो भी 20 साल, ऐसा हाँ? नहीं थोड़े देर थोड़ा दिन, 20 साल दुखी रही, कहना मानते गए, कहना मानते गई, दुखी रही, एनर्जी कौन सी रेडिएट की? अनहैप्पीनेस। This is the story of the wife, and everybody will have mercy for the wife. Bichari, victim है, अत्याचार उस पर हो रहा है, ठीक है, exploitation है ना ये पे। Husband किस position में है? Husband outwardly ये feel करे, I'm very strong, मैं जो बोलता हूँ मेरा कहना माना जाता है, लेकिन actually the being की पूरी पावर, सेंस ऑफ पावर सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है कि वो मेरा कहना मानेगी। जब पावर दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई, आपने ये लास्ट टाइम कहा, जितना दूसरे पर डिपेंडेंट है पावर के लिए, उतनी अपनी पावर कम होती जाएगी। वो भी ठीक कि अपनी पावर कम होती जाएगी, व्हाट अबाउट 20 साल जो उसने उनके प्रति दर्द की थॉट्स क्रिएट की? आप देखो, अगर कोई एक व्यक्ति भी हमारे लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, वो हम तक नहीं पहुंचेंगे, वो हमें पहुंचती हैं, और जो ये वाइब्रेशन हमें पहुंचती है वो हमारी बैटरी को डिस्चार्ज, बिकॉज दिस सकिंग एनर्जी। मेरे को कंटिन्यूसली आपसे नेगेटिव मिले तो वो मुझे डिसएम्पावर करेगा। 20 साल हस्बैंड को वाइफ से दुख, उदासी की वाइब्रेशन मिल रही थी, वो हस्बैंड की पावर को अंदर से कम करती जा रही थी। अंदर से पावर कम होती जा रही थी तो आउटर पावर की एडिक्शन बढ़ती जा रही थी। दिस बिकेम वेरी विशियस साइकिल।
1: तो ये हस्बैंड क्या हुआ?
2: ये हस्बैंड अपनी वीकनेस का एक बहुत बड़ा विक्टिम है। मास्टर मीन्स हु इज इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, एंड विक्टिम मीन्स जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं।
1: फैंटास्टिक पॉइंट, मैं जरूर इमीडिएटली नेक्स्ट एपिसोड में ये बात करना चाहूंगा कि मास्टर कौन है और विक्टिम कौन है। थैंक यू सो मच।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच। नमस्कार।
2: इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 0999974455.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

हमारी सहायता करी, उसमें सबसे परिचय कराया। और जब प्रभु ने परिचय कराया हनुमान जी का, तो नेत्र भर आए प्रभु के और बोले, भरत ये जो कपि हैं, ये जो हनुमान हैं, इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी, अभी ना कहना हांजी ना जी।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1600 ਚੌਕ ਕਰਤੀ ਹੈ।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Alpha. सबसे दमदार और रोमांच कहानी
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है.
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को.
2: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर.
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में. अल्फा
2: इंडिया अल्फा से डरेगा.
4: वो वेट कर रहा है तुम्हारा.
5: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया. की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई. एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने.
5: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा.
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हांजी। From India to Miami to the whole world, go ahead and slow it down, girl.

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।